सौ संताली, माफ करना 4378700000 ते तुसी मैनूं कॉल कर लेनी, मेरे को 7-8 टिकट्स बचियां ने। सो इस वीकेंड भी थोड़ा मनोरंजन करांगे। फिर एक होर खुशखबरी तुहानूं देन जा रहे हैं, बस कुछ ही समय दे विच।

मां बोली है मामा वर्गी ठंडियां मिठियां छावां वर्गी, मां बोली है मामा वर्गी ठंडियां मिठियां छावां वर्गी, बाल पुने दे चावां वर्गी ते सजन दियां खुलियां बाहां वर्गी, खुलियां डुलियां थावां वर्गी मेरे पिंड नूं जांदे रावां वर्गी। आओ इस दी शान वधाईए, इहदे सोले रल मिल गाईए, क्योंकि बोली अपनी ते सानू माण होना चाहीदा। बंदा जदों बोले तां पछाण होना चाहीदा। अपनी पहचान वाला दीवा ना बजा दिओ, वेखिओ पंजाबी ओ पंजाबी ना भुला दिओ, वेखिओ।

0: सर्दी च हीट नहीं चलदी ते गर्मी च एसी।
1: ले आपा हुणे करदे आ संधू साहब नाल गल ते करदे आ मसले दा हल।
0: एसी फर्नेस गैस लाइन वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन नव एयर कंफर्ट ते जतिंदर संधू नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ। कॉल 647-706-6640
1: 647-706-6640।
2: ओए ट्रक काला लिया जदों वेखो एदियां कमानियां इटलियां रहंदियां की करा।
3: मैं सुनया जी अपने पंजाबी भरावां जे अते गैरी ने खोल दित्ती है GTA विच ट्रकां दे स्प्रिंगां दी पहली शॉप PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।
4: पहुंचो 5330 ब्रेडको बुलेवार्ड मिसीसागा मेन इंटरसेक्शन डिक्सी एंड मैथसन।
5: इत्थे पी लाइन लेजर मशीनां नाल अलाइनमेंट ते नवे स्टाइल दियां मशीनां नाल बैलेंसिंग कीती जांदी है। इन्ना ही नहीं 4 व्हीलर्स अते 18 व्हीलर्स दे टायर्स दा खास प्रबंध भी है। जे तुसी ट्रकां ते ट्रेलरां दी कमानियां दा तसल्ली बख्श काम करवाना चाहुंदे हो
3: कॉल करो जे एंड गैरी नू
5: 905-459-5533
3: 905-459-5533
5: PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।

0: 7998877 थैंक यू जी।
1: टीम पूर एंटरटेनमेंट पेश कर देने पंजाबी विरसा 2026 टोरंटो शो संडे 9 अगस्त नो थिएटर एट ग्रेट कैनेडियन टोरंटो।

0: for entertainment. 647-400-6862 416-303-4444. ये तुसी इस शो नो मिस करना चाहोगे?
1: प्योर पंजाबी खानिया अते स्वीट्स लई मशहूर प्योर पंजाबी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट
2: डाइनिंग टेकआउट केटरिंग लाइव ट्रक ले आके थोड़ी कार केटरिंग की सर्विसेज दें देने
1: वेज नॉन वेज केटरिंग ताजिया स्वादलिया मिठाइया ते जायकेदार खाने लई इको एक नाम प्योर पंजाबी सांझा विरसा रेडियो दा रेफरेंस देन ते पाओ 10% डिस्काउंट
2: आज ही विजिट करो 4025 ब्रेंडन गेट ड्राइव मिसिसागा प्योर पंजाबी 647-338-9172 कॉल करो गुरजीत रंधावा 647-338-9172
3: पाजी अज करे तंदूरी बनाओ पर जो स्वाद तंदूरी बॉयज दे आना वो करे नहीं बन पाउना
2: हाय गाइस एंजॉय करो तंदूरी बॉयज वेज नॉन वेज स्वादले तंदूरी खाने ले पहुंचो तंदूरी बॉयज
1: सांझा विरसा रेडियो दा रेफरेंस देन ते पाओ 10% डिस्काउंट पाठ जागो अते वेडिंग ले आज ही केटरिंग बुक करो 905-956-2111 905-451-9200 सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशंस
4: वो इस साल तो इंश्योरेंस बहुत महंगी होगी घर ते ऑटो दी इंश्योरेंस दी किश्तां ने सारा बजट हिलाता
5: ओ जी अमनदीप कौर इंश्योरेंस एडवाइजर दे हुंदे आ कोई फिकर नहीं ए देन के बेस्ट रेट्स इन द मार्केट विद फुल कवरेज
4: होम ऑटो कमर्शियल ट्रकिंग ते बिजनेस इंश्योरेंस ले कॉल करो इंश्योरेंस एडवाइजर अमनदीप कौर होरानो एट 416-618-2761 416-618-2761
6: लेडीज एंड जेंटलमैन यू आर नॉट ready for this
7: par hun thonu car lain layi ready karange mortgage the king girish sharma
8: residential commercial refinancing debt consolidation second third mortgages private funds
7: sab le yaad rakho girish sharma pre approval hi nahi closing tak denge pura saath dealing with all banks
8: call 647-606-8110
7: or visit sharmamortgages.com
9: स्टीफन फर्नीचर की धमाकेदार फेस्टिवल सीजन सेल इस साल फेस्टिवल सीजन में अपने घर को भी जरूर सजाइए अपने मनपसंद बेस्ट क्वालिटी हाई एंड ब्रांडेड फर्नीचर पे कोई भी रीजनेबल ऑफर एक्सेप्टेबल होगा तो फिर आज ही स्टीफन फर्नीचर आए और अपने घर को स्टीफन फर्नीचर के बड़े बड़े ब्रांडेड फर्नीचर पे बड़ी बड़ी डील्स का फायदा जरूर उठाएं सर्विंग सिंस 1992 फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल टू लोकेशंस टू सर्व यू 2575 स्टील्स एवेन्यू ईस्ट ब्रैम्पटन 905-790-0560 6 Marconi Court, Bolton 905-951-9394 Stephen Furniture ki dhamake dar festival season se
10: ट्रक एक्सीडेंट ते रब ने हाथ दे के बचा लिया
11: ते कार दे खर्चिया नु हरजीत जंजुआ दी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ने संभालिया अपने भविष्य नु सुरक्षा करन ते प्रेजेंट दे पीस ऑफ माइंड ले आज ही संपर्क करो हरजीत सिंह जंजुआ
12: हर तरह दी वधिया इंश्योरेंस पॉलिसी ले याद रखो इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट हरजीत जंजुआ दा नाम लाइफ इंश्योरेंस डिसेबिलिटी क्रिटिकल इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस विजिटर इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस किड्स प्लान आरआरएसपी आरईएसपी टीएफएसए कॉल करो
2: 6475-5294-647-835-5294
13: नाले चोपड़ियां नाले दो दो
14: आहो जी मेनू भी पता नाले ग्रोसरी नाले वधिया खाना यानी दाना मंडी जिते हर तरह दी इंडियन ग्रोसरी दाला मसाले पिकल्स चौल चाह पत्ती फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स
13: डेयरी प्रोडक्ट्स स्नैक्स फ्रेश चिकन बीफ गोट मीट सब कुछ मिलूगा इना दे रेस्टोरेंट विच तुसी परांठे चना भटूरा वेज थाली वेज बिरयानी बटर चिकन विद नान दा स्वाद लो
14: एक बार आओगे फिर बार बार आओगे
13: अनबीटेबल प्राइजेस सेल ऑल टाइम दाना मंडी 1729 Queen Street, East Brampton, Major Intersection, Queen and Bramley.
14: Call Gagan or Gurinder at 905-286-9257.
2: शादी दी मूवी बनवाने ले या रिंग सेरेमनी ले वेडिंग एनिवर्सरी जागो प्री वेडिंग बर्थडे और एनी इवेंट दी वधिया वीडियोग्राफी ते फोटोग्राफ शूट करन ले याद रखो देसी सिनेमैटिक फिल्म अपने हाई एंड इक्विपमेंट्स ते क्रिएटिव आइडियाज दे नाल बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर देने बुकिंग ले आज ही कॉल करो जगदीश सिंह नु 416-930-1251 416-930-1251
15: ਵੱਡੇ ਵੀਰੇ ਚੰਗਾ ਟਰੱਕ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ?
16: ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਰੱਕ ਸੇਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ, 12 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਪਾਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚੰਗੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾਓ।
17: ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਹੈ ਕਾਬਲ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ, ਟਰਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰਸ ਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ
16: 416-717-2929
17: 416-717-2929 ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ, 14 ਸਟੇਨਵੇ ਬੁਲੇਵਰਡ, ਯੂਨੀਫੋਰ, ਇਟੋਬੀਕੋ।
18: ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 647-5594-7 8355-5294 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: ओहो, सर्दी च हीट नहीं चलदी ते गर्मी च एसी।
2: ले आपा हुणे करदे आ संधू साहब नाल गल ते करदे आ मसले दा हल।
1: एसी फर्नेस गैस लाइन वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन नव एयर कंफर्ट ते जितेंद्र संधू नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ। कॉल
3: 647-706-6640-647-706-6640। दुनिया विच किते भी घूमन फिरन लई या सस्ते टूर पैकेजेस लई याद रखो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल 905-678-1200 कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल दो लोकेशन तो अपनी सेवावां प्रदान करते ने 2883 डेरी रोड ईस्ट मिसिसागा सेकंड लोकेशन 4550 Ebenezer Road Brampton। हर तरह दे टेस्टी इंडियन फूड अते स्वीट्स लई याद रखो द्वापा स्वीट एंड रेस्टोरेंट।
4: चार लोकेशंस तो तुहानू सर्व कर देने 100% प्योर वेजिटेरियन ते फ्रेश फूड एंड स्वीट्स लई द्वापा स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। करो डाइन इन टेक आउट टिफिन सर्विस दे नाल नाल केटरिंग अक्रॉस GTA। बल्क ऑर्डरली साडी फैक्ट्री विजिट करो।
3: ओ जी हुण तुसीं भी देर ना लगाओ ग्रीन वैली सुपरमार्केट आओ। सुपर डील्स दे नाल ग्रोसरी ते डॉलर बचाओ। वेजिटेबल फ्रेश फ्रूट्स मीट चिल्ड बियर डाइन इन ते टेक आउट भी कर सकते हो। देर रात तक हफ्ते दे सत्तों दिन खुलता है। तंदूरी बाइट चाट एक्सप्रेस विच बैठ के वधिया स्वादले फूड दा मजा उठाओ। वधेरे जानकारी ते ऑर्डर लई कॉल कमाओ 905-913-1166 905-913-1666 या पहुंचो 11665 McQueen ड्राइव मेफील्ड दे नुक्कड़ ते।

0: to find health insurance specialists from Top Choice Insurance Agency.
1: ਰੱਖਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਐਮੀ ਵੈਲ
2: ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਰੂੰ ਆਓ ਜੱਟ ਖੱਬੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਦਾ
1: ਟੂ ਸਾਊਂਡ ਲਾਈਵ ਐਂਡ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਮੀ ਵੈਲ ਲਾਈਵ ਇਨ ਟੋਰਾਂਟੋ August at Great Canadian Casino Resort. Toronto Valeo, ready ho jo. Buy your tickets at ticketmaster.ca or call 647-964-8573.
3: Tusi apne phone plan te bahut paise de rahe ho. Cellular point te assi tuhade layi leke aaya bahut hi vaddi savings. Best phone plans te bina kise shart ton. Chahe tusi business ya family plans ch saving chahunde ho. No contract option ya latest phone chahida sab to best coverage naal cellular point te tuhanu sab kuch milega visit karo cellular point save today it's that easy apni nearest location cellularpoint.ca te vekho cellular point more phones more plans more choice
4: A to Z kitchen cabinet bhai wah kya kitchen cabinet taiyar karde han lucky bhaji diyan baniyan kitchen cabinet dekh ke guanti vi bohane nal tade ghar aunde han sheeshe nal bhariyan kitchen cabinet waste designer kitchen cabinet waste A to Z kitchen cabinet 416-720-7073 905-720-7073 de call kar sakde ho
5: HK Movers का हो साथ लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात HK Movers होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी बिग और स्मॉल वी मूव इट ऑल वी ऑल्सो शिप कार्स वी ऑल्सो डू स्टोरेज 30 इयर्स एक्सपीरियंस वी सर्व विद अ स्माइल HK Movers गिव अस अ कॉल मिस्टर हरमिंदर 416-524-6704 416-524-6704
6: टीम फोर एंटरटेनमेंट पेश कर देने पंजाबी विरसा 2026 टोरंटो शो संडे 9 अगस्त नो
7: दुनिया मेले जानती
6: थिएटर एट ग्रेट कैनेडियन टोरंटो

0: Cogeco.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: Hello.
2: Kataria Tours and Travel?
1: Hanji, Kataria Tours and Travel.
2: India diyan tikta chahi diyan si.
1: Oh, India ki, tusi jitho marzi diyan tikta lai lo. India kithe jana?
2: Chaar tikta Delhi diyan, te do Amritsar diyan. Mil jaan gyan?
1: Mil jaan gyan. Bilkul mil jaan gyan. Delhi, Mumbai, Amritsar. Eh hota saadi speciality hai. Bas dasso ki tikta kato diyan chahi diyan ne. Te haan, special tour packages te honeymoon packages vi saade kol available ne.
2: Parosiman service te sab to badia rates le ikko ikna. Kataria Tours and Travel. Booking le aaj hi call karo 905-678-1200 905-678-1200. Kataria Tours and Travel.
3: 32-55-80 98.
2: ए की गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो?
3: वो काउंटिंग नहीं, ए ते 32-55-80 ते 98 इंच दे टीवी ने जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे, हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते, 32-98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
2: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी। कॉल 905-450-2828 905-450-2828.
0: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्टरी जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1165।
1: भाई साहब, जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
2: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है, ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो करदी है ते कवरेज इंक्रीज करदी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-5500।
3: यारों के साथ जशन या फैमिली के साथ करना हो जशन, ढाबा ऑन द फॉल्स आए। टेस्ट का वादा और चॉइस भी ज्यादा।
4: किल्ली वाला बटर चिकन, रोगन जोश, सोया चाप, बेस्ट वेज नॉन वेज बिरयानी इन द टाउन, बेस्ट वेज नॉन वेज एपेटाइजर या माउथ वाटरिंग मेन कोर्स खाना हो तो सीधा चले आए ढाबा ऑन फॉल्स, द बेस्ट फूड इन।

0: अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर होती है तो वही दैट्स नथिंग लाइक इट
1: जी.
0: और वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सत श्री अकाल टू ऑल द लिसनर्स. सुखी जी,
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल मुकेश जी, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल. और मुकेश जी, जैसे कि सुखी जी ने आपसे पूछा कि मार्केट का क्या हाल है. अच्छा मुकेश जी, अच्छा मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे हमारे जैसे लोग प्री कंस्ट्रक्शन होम्स जो है कुछ साल पहले परचेज किए थे और अब क्लोजिंग जो है पास आ रही है, बट जो लास्ट मिनट पे मॉर्गेज डिक्लाइन हो गई, अप्रेजल जो है वो लोअर है देन द परचेज प्राइस, सो शॉर्टफॉल हो गई है फंडिंग की भी, तो उसमें क्या हो सकता है? व्हाट इज योर ऑप्शंस एंड आपसे कैसे बात करके कुछ डील जो है बन सकती है, उस पर थोड़ी सी बात.
0: श्योर श्योर, बिल्कुल. ये क्वेश्चन बिल्कुल करंट मार्केट पे भी, जैसे सुखी भाजी ने क्वेश्चन किया और आपने किया, तो देखें 2021 में 22 में जिन्होंने कॉन्डोज बाई किए और जो आज क्लोजिंग करा रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली उन हाई राइज कॉन्डोज की वैल्यू नहीं आ रही है ना. तो और ये छोटा मोटा शॉर्टफॉल नहीं है, ये 100,000 से लेके 300,000 तक का है ना. तो अब कैसे इसको कवर अप करें, इसका सोल्यूशन क्या है, राइट? इसके देखें तीन ऑप्शन है, राइट? नंबर वन है जो काफी लोग प्रेफर करते हैं, उनको ब्लैंकेट मॉर्गेज मिल जाए, है ना, किसी बैंक से मिल जाए जहां पर विदाउट अप्रेजल उनकी मॉर्गेज फाइनेंसिंग हो जाए. बट ये फॉर्मूला किरण जी हर किसी पे नहीं अप्लाई होता.
1: अच्छा जी,
0: ओके. सो आई एम, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू मेंशन और एक्सप्लेन एवरीथिंग, ठीक है. बट ये कि वेरी फ्यू पीपल आर क्वालिफाइड, उसके लिए यू नीड टू टॉक टू मी और एनी प्रोफेशनल जिनको जानते हैं, तो उसके लिए कंडीशन है. बट राइट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास पहले, वो पता करो, राइट, कि आप क्वालिफाई करते ही नहीं करते हो, क्लोजिंग आज नहीं आ रही, दो महीने के बाद है, छह महीने के बाद है, तो आप पैनिक में नहीं आ जाओ, बेटर यू स्टार्ट राइट नाउ. दूसरी बात ये कि आप देखिए, अगर जो फिलअप है जो नहीं क्वालिफाई कर रहे ब्लैंकेट मॉर्गेज के लिए, अब दूसरा ऑप्शन क्या है, अब क्लोजिंग तो करानी है, राइट, या तो देखें अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी से आप मॉर्गेज रीफाइनेंस करके इक्विटी निकालें, है ना, दूसरा ऑप्शन है विदाउट, ठीक है ना, इक्विटी निकालें और उसको फिलअप करें उस गैप को, राइट. नंबर थर्ड ऑप्शन ये कि विदाउट डिस्टर्बिंग, विदाउट डूइंग अ रीफाइनेंसिंग, अगर आप नहीं करना चाहते, पेनल्टी ज्यादा है, तो थर्ड ऑप्शन है कि आप सेकेंड मॉर्गेज ले सकते हैं या होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट ले सकते हैं, जिनके थ्रू आपको $1,00,000, $2,00,000, $3,00,000 जो भी है बेस्ड ऑन दी एग्जिस्टिंग हाउस जो आपके घर में है, उसके हिसाब से आपको 80% फाइनेंसिंग तक आपको फंड्स मिल सकते हैं. तो वो फंड्स के लिए आपकी क्लोजिंग, मतलब आपकी हो पाएगी, हो जाएगी आपकी क्लोजिंग. तो ये ऑप्शन है तीन, तो उसके लिए कौन से ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, कौन सा फिजिबल है, कहाँ पैसे बचेंगे आपके, उसके लिए डेफिनेटली नीड टू हैव अ मीटिंग ओवर द फोन और इन पर्सन, तो वो जरूरी है. तो उसके लिए अगर आपकी क्लोजिंग एक महीने में आ रही है, देखिए अगर लास्ट मिनट क्लोजिंग है, अगर बैंक ने डिक्लाइन कर दी है, तो वो भी सोल्यूशन है. और आपके पास अगर कुछ समय है तो उसका भी सोल्यूशन है, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है. तो फॉर अ राइट इन्फॉर्मेशन, राइट नॉलेज के लिए, यस, डेफिनेटली यू कैन कॉल मी, आई विल सी हाउ आई कैन हेल्प यू. This is Mukesh Chauhan, mortgage broker from Mortgage Diligent. Number to call me 647-512-7000. 6475127000.
1: बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी. और साथ में हमारे कुछ लिसनर है, मैं उन्हें बोल दूं कि प्लीज थोड़ा जहां तुसी जड़ा जी वेट कर लो, लाइन्स जड़ियां जी आपां बहुत जल्दी लवांगे. नाल के साथ में मुकेश जी, मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि व्हाट इफ समवन इज पेइंग प्राइवेट फाइनेंसिंग के साथ, बहुत सारा जो है उन्हें करंटली हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, बट उनकी इनकम जो है लो है और उनकी जो है क्रेडिट भी बहुत जो है अच्छी नहीं है, एंड आप कैसे उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं और हाउ यू कैन हेल्प देम टू गो टू द ट्रेडिशनल बैंक और वो बैंक के थ्रू जो है फाइनेंसिंग करा सकते हैं? सो आप उसके लिए थोड़ी सी जो है टिप्स एंड ट्रिक्स जरूर बताना जी.
0: देखिए कभी भी बैड क्रेडिट होता है, या किरण जी आसान लफ्जों में बोलूं, किसी का कंज्यूमर प्रपोजल है बैंकरप्सी, राइट, तो उनका माइंड में होता है, उनको ये लगता है कि हमें प्राइवेट मॉर्गेज ही मिलेगी, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, है ना. तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ऐसा नहीं है. इट्स नॉट नेसेसरी कि हर इंडिविजुअल की प्राइवेट मॉर्गेज ही लेनी पड़े. आपके पास अगर लो क्रेडिट है, बैड क्रेडिट है, इनकम इनकंसिस्टेंट है, या दो की इनकम थी अब एक ही है घर में इनकम, या बिजनेस स्लो डाउन हो गया आपका, देखिए सिचुएशन डिपेंड करती है. लोन टू वैल्यू क्या है, घर की मॉर्गेज जो है 5,00,000 है मगर घर की वैल्यू 1,000,000 है, तो उससे भी फर्क पड़ता है. तो डिपेंड करता है, यू नो, नंबर आंसर टू योर क्वेश्चन, आपको प्राइवेट मॉर्गेज लेने की जरूरत नहीं है, स्पेशली आपका बैड क्रेडिट है, लो क्रेडिट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो इस चीजें में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग के थ्रू आपकी जो भी सिचुएशन है, देखिए बैड क्रेडिट क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द हाई क्रेडिट्स, आपने पेमेंट मिस करी है, आपने ओवर यूटिलाइजेशन करी है, राइट, तो उस सबसे उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, उसको मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग के थ्रू अपने मल्टीपल डेट से उनको हम पे कर सकते हैं जितने भी ज्यादा है। और सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप उनको जब पे करेंगे आप उनको, तो यू नॉट नेसेसरी टू कैंसल दोज ऑल द क्रेडिट, तो वो भी साथ साथ रहेंगे, आपके डेट्स भी पे हो जाएंगे, क्रेडिट भी इम्प्रूव होगा, आपको घर में एक्विटी साथ में चाहिए बेसमेंट बनाने के लिए या रेनोवेशन के लिए, या अभी आपको एक नई प्रॉपर्टी बाय करनी है तो वो भी पॉसिबल है। बट आप जो है इस डोंट थिंक दैट आपका क्रेडिट जो है खराब हो गया है, आपने कंज्यूमर प्रपोजल किया है तो आपको प्राइवेट मॉर्गेज लेनी पड़ेगी, नो। सो गिव मी अ कॉल, आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट टू डू योर मॉर्गेज विद अ ट्रेडिशनल बैंकिंग, राइट। हमारे पास बी लैंडर है, ऑल्टरनेटिव लैंडर्स भी है, मोनोलाइन लैंडर्स भी है, तो बेस्ट थिंग ये है कि आपकी सेविंग होनी चाहिए $2,000 से $3,000 की महीने की, है ना। आपको सिचुएशन बेटर करनी है, तो बेटर करने के लिए आपको बेस्ट लोगों को अप्रोच करना है, किसी भी प्रोफेशनल को अप्रोच करें, एनी वन लाइक मी जिसको आप लगता है कि ये राइट इन्फॉर्मेशन है, राइट नॉलेज राइट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वंस अगेन दिस इज मुकेश चौहान, मॉर्गेज ब्रोकर। My number to call me 647-512-7000, 647-512-7000. Kiran ji, it's okay ji, thank you so much.
2: Thank you sir. सो ये संजीव मुकेश चौहान जी, और किसी भी मॉर्गेज की किसी भी चीज की कोई गलबात करनी इन्हां नाल कर सकते हो। तो अज का प्रोग्राम ढिलों वीडियो के सहयोग में अभी पेश कर रहे हैं, पीजा डिपू का भी सहयोग है, अंजम कुरैशी, जेकर रब ना करे तो एक्सीडेंट हो जाता है, तुम इन सलाह करो 416-570-0157 के उत्ते। तो किया 427 ने भी अज्ञा प्रोग्राम साथ दिता, बहुत व्डे जोड़ा है किया 427 ने अपना शोरूम बनाया, इस वीकेंड के उत्ते एक वीड्डी सेल लगन जा रही है किया की, और कोई किया दी गड्डी लीज ते लैनी जां बाय करनी है ते तुसी लै सकदे हो, और साडा प्रोग्राम उत्थों लाइव ऑन लोकेशन भी चलेगा। ते नाल नाल अज दा प्रोग्राम टिक्का जंक्शन ने भी स्पॉन्सर कीता। ते हुण आपां गलबात करदे हां, डॉक्टर साहब भी साडे स्टूडियो च पहुंचे हुए ने, डॉक्टर ओबरार जी जिहड़े कि होम्योपैथी डॉक्टर ने, गोल्ड मेडलिस्ट कनेडा दे विच ने। सर जी आयां नूं वेलकम।
3: जी आयां नूं जी, तमाम सजणा बेलियां नूं नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਫਰਮਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਜਨਾਬ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਕੋਰਸ ਜਿਹਦੀ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਧੁੰਮ ਮੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ 1, ਮੈਨ ਪਾਵਰ 2, ਮੈਨ ਪਾਵਰ 3।
2: ਓਕੇ।
3: ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸਲ 'ਚ ਵਜ੍ਹਾ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਈ ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਲਈ, ਉਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨ ਪਾਵਰ 1, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਾਬੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਨਰਵਸ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਚੋਂ ਸਿਗਨਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ, ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਨਰਵਸ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚੋਂ
2: ਜੀ
3: ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸਾਬ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨ ਪਾਵਰ 1 ਕੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਰਵਸ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਾਬੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਜਾਇਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਜਾਇਟੀ। ਐਂਜਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਖੌਫ, ਘਬਰਾਹਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਵੱਟਿਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਂਜਾਇਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਅੱਛੇ ਤਲਕਾਤ ਰੱਖੋ, ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਮਾਦ ਕਰੋ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਨਾ ਵੱਟੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ ਔਰ ਇਤਮਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਹਾਲ ਰੱਖੋ। ਦੂਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਬਲੱਡ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਗਨਲ 'ਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਫੌਜ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੁਰਾਕ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਲੜਨਗੇ ਕੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਾਸਤੇ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਿਆਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਕਰਾਈਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਓਵਰੀ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਾਰਮੋਨ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕੋਲ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸਰਾਤ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਵੇਲੀ ਵਾਲੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਹਵੇਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਤਮਾ ਹਜੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਹਵੇਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਲੱਭਿਆ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ। ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨਜ਼ਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਖੂਨ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅਸਰਾਤ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਗਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੀਬ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਕੋਰਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ।
2: ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਜੀ।
3: ਜੀ 4377421 7860, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 4374217860। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਨ ਜਾਂ ਸੁੱਕੀ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ 5:30 AM 'ਤੇ। ਪੂਰੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਮ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵਜੂਹਾਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬੜੇ ਆ ਰਹੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।
2: ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਤੇ ਲਓ ਫਿਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਹਾਰਡ ਜੋਬ ਹੁੰਦੀ ਟਰੱਕ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਉਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਸੋਨੀ ਪਾਵਲਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।

0: 416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551- कैनेडा दे स्टडी वीजा, एक्सप्रेस एंट्री, कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री, स्पाउसल फाइल, पेरेंट्स पीआर, सुपर वीजा, नैनी, वर्क परमिट, फार्मर, इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल, गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सॉल्यूशन लैन लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो।
1: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया, होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला, हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन। हुणे ही कॉल करो 416-456-6161।
2: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है, अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
3: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो, ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381 ते।
2: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउंगे। हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381।
0: हेलो AM 530 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो।
5: टुडे विच लाइव गलबात करन लई हुणे कॉल करो 905-564-6444।
0: 905-564-6444।
5: सुनते रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो, चलो AM 530 तो।
6: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
7: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
6: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
7: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे, इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी। जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
8: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
7: 416-509-1509
8: और विजिट insuranceforyou.ca।
5: दोस्तों देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो नो या चलो AM 530 ते 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उहनां नूं सुनण वास्ते जां देश प्रदेश लाइव देखने वास्ते लॉग इन करो साड़ी वेबसाइट नू www.deshpardeshradio.com या www.deshpardeshtv.com। लाइव सुनना चाहते लाइव पे क्लिक कर लो, जो वॉच करना चाहते हैं तो उसे क्लिक करो, या फिर अपने IPTV बॉक्स के उत्ते पंजाबी सेक्शन क्लिक करो, उसके उत्ते जाके देश प्रदेश टीवी नू क्लिक करो, उत्ते तुसी सुन भी सकते हो, वेख भी सकते हो 24/7।
9: लखां दिलां दी धड़कन द सुपरस्टार एमी वेल।
10: मैं कितने बैठे आ करूं, आओ जट खब्बी सीट पे बंदूक रख दे।
9: New Sound Live and Cellular Point present Amiwell Live Inter

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर।
0: हाँ।